तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

दुनिया में आए हैं, जीवित हैं, भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो है। मैं हर एक मनुष्य की जो आशाएं होती हैं, निराशाएं होती हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास सब कुछ बहुत अधिक है।

0: 68, मोबाइल नम्बर 98568104।
1: तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता। सहारा इन्टरनेसनल फर्टिलिटी सेन्टर।
2: आयो है मासु, ताजा ताजा मासु, दोस्ती टू मिट सपमा।

0: तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर नव यूनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850 1246 9852 10504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।
1: हेलो क्रिस्पी, सुन न, घरमा चाहिने खाद्यान्नको सामान सकिएको छ, यी सम्पूर्ण सामान किन्न कता जाने होला?
2: किन यता उता गर्नु पर्यो? पोखरा 7 मासबारमा रहेको पीएसटी टेरसमा जाऊ न, त्यहाँ त गुणस्तरीय सामान सस्तो र सुपथ मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: सम्पर्क पीएसटी ट्रेडर्स पोखरा 7 मासबार श्रीकृष्ण माविदेखि बुलाउदी लेक साइड जाने बाटोको बीचमा प्रोप्राइटर टेकराज पौडेल मोबाइल नम्बर 9860309362 9560334 32। खाद्यान्नका सम्पूर्ण सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ, साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मनसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

पूरा मिल्यो चमत्कार पूरा बिग्रियो बलात्कार बेरोजगार रोजगार आकाशित मोजगार थरी थरी सामान यहाँ थरी थरी मल किडनी बेच्ने मुटु किन्ने एउटा पसल होल।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुल्सरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरामा।

0: तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852110504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।
1: यदि कोही महिला को इच्छा विपरीत जबरजस्ती प्रलोभन देखाई प्रेम सम्बन्ध बनाई पद प्रतिष्ठा या पैसा को मोहमा पारेर या झुक्याएर राखिने यौन सम्बन्ध जबरजस्ती करनी हो, कसैले 18 वर्ष भन्दा कम उमेर को बालिकालाई निज को मंजूरी नै लिएर यौन सम्बन्ध राखे पनि यो जबरजस्ती करनी नै हुन्छ। यस्तो कार्य दण्डनीय छ। खबरदारी गरौं, कोही कसैलाई यस्तो परेमा उजुरी गरौं र कानूनी कारवाही गरौं।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में।

अब सफलता को साथ मा नॉन स्टॉप म्यूजिक नॉन स्टॉप म्यूजिक सुनो मजाले नॉन स्टॉप म्यूजिक सफलता को साथ मा

0: तामा पीतल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852510504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।
1: माइला दाई ए माइला दाई पानी तो धेरै ठूलो पर्यो खोला किनारा र भिरालो जमीन में बस्ने त सतर्क हुनु पर्छ है।
2: हो सुरक्षित ठाउँमा सर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।
3: विपद को पूर्व तैयारी गरौं जनधन को क्षति कम गरौं वर्षायाममा बाढ़ी र पहिरो को जोखिम बढ़ने भएकोले उच्च सतर्कता अपनाऊ पूर्व सूचना प्रणाली में ध्यान दिऊ र आपतकालीन अवस्था का लागि तयारी अवस्था में रहौं।
4: अनुरोधक गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रार को कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा

0: कार्यवाही हुन्छ।
1: सचेत बनाऊ
0: सामाजिक सञ्जाललाई सद्भाव, सकारात्मक विचार र प्रेरणा फैलाउने माध्यम बनाऊ।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: अब रेडियो प्रस्तुता उद्घोषण कला र नेतृत्व क्षमता वृद्धिका लागि सम्झनुहोस् रेडियो सफलता 103.4 MHz तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061-452-966 061-455-966 र मोबाइल नम्बर 98460-00851।
3: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
4: वेस्ट सल्फर ले आयो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
3: अब सब को लागि वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवाहरू को लागि वेब सर्फर नेपाल अरू भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस सेवा को लागि वेब सर्फर घर घर मा फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस
4: कन्ट्याक्ट 061-55-3050 061-58-9848
3: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856120046 9852510504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।